0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: मान रेको जब मैं बिरनी रेको नमा बीच मैं पुआ डूंग तो ट्रॉल बोन मोन कित गेनो बेरोटी केरे पिकारे दुजो रेको डूर किते

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो